0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ इसके तहत सुनिए अनमोल विचार।
1: जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित पालन करता है उसे अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। सच तो ये है कि एकमात्र अपने कर्तव्यों के पालन का अधिकार ही ऐसा अधिकार है जिसके लिए मनुष्य को जीना और मरना चाहिए। इसमें कोई दो राय ही नहीं कि बिना कर्तव्य के ही फल का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, अर्थात किसी भी कार्य की सिद्धि बड़े बड़े मनोरथ से नहीं बल्कि परिश्रम के द्वारा ही होती है। जिस व्यक्ति में कर्तव्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसमें सब उचित अधिकारों का समावेश स्वतः हो जाता है।
0: अनमोल विचार के बाद अब आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मातृ वंदना संवेद स्वरों में।

श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे कुछ देशगान। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि तेज हवा के चलते वायु की गति लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को आगाह किया जाता है कि वे 26 अगस्त तक समुद्र में न जाएं। आज दोपहर तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा होगी। तो ये थी मौसम की जानकारी। और अब एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन आप सुनेंगे। सुबह 10 बजे सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, दिन के 11 बजे जनता जंक्शन कार्यक्रम, 11:30 पर आप सुनेंगे विशु भटनागर और गुलाम अली की आवाज़ों में चंद खूबसूरत गज़लें, दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे, मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर श्रुति मधुरम के तहत पुराने फिल्मी गीत आप सुनेंगे, दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी प्रणति देवी। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर डॉक्टर सीमा दास के साथ ली गई भेंटवार्ता का विषय रहेगा आंखों की सुरक्षा और नेत्रदान। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3 बजे सुनिए एल्बम टाइम कार्यक्रम, 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशरागिनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम, सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उदित नारायण, अनूप जलोटा और ए हरिहरन। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 आप सुनेंगे रक्षाबंधन का पावन त्यौहार, इस विषय पर चर्चा और उसके बाद नन्हे दोस्त आस्था कुमारी से मुलाकात होगी जिसका विषय रहेगा खेल और अनुशासन। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम

दूसरे सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा औरंगाव के सेंट जोसेफ चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत आप सुनेंगे। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी, 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण, 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम, तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे नंजा मरपदले के तहत पुराने फिल्मी गाने आप सुनेंगे व पीएम उज्ज्वला योजना पर चर्चा होगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। संध्या 6 बजे संगीत संगनी कार्यक्रम, 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत आप सुनेंगे, 6:45 पर देशगान कार्यक्रम। संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी व जलियानों का यात्रा कार्यक्रम होगा। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युवानी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स, तथा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर चर्चा होगी। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम, 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरव गान कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका रेडियोस्कोप और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में विदुषी प्रतिमा तिलक का ख्याल गायन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

अब लीजिए सुनिए, एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी उड़ान संबंधी जानकारी।

0: श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उदित नारायण, अनूप जलोटा और ए हरिहरन। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन। सुबह 10 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नगर पालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 24 वार्डों के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कल से सर्वेक्षण शुरू करेगी। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष ने कल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। व्यवहारिक प्रशिक्षण के चलते गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक की सड़क कल से 28 अगस्त तक बंद रहेगी और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के तहत अंतर स्कूली हॉकी टूर्नामेंट कल से शुरू।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। नगर पालिका परिषद अपने सभी 24 वार्डों में हेयर कटिंग सैलून, नाई की दुकानों, ब्यूटी पार्लर, स्पा और अन्य प्रतिष्ठानों पर सर्वेक्षण कर रही है। इसका उद्देश्य ऐसे प्रतिष्ठानों के नगर पालिका रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें अद्यतन करना है। इसके लिए टीमें कल से इन जगहों का दौरा करेंगी। इस दौरान टीम के सदस्य जारी वैध पहचान पत्र साथ रखेंगी। इसके लिए किसी भी तरह की कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा। सर्वे में प्रतिष्ठान की बुनियादी जानकारी शामिल होगी। नगर पालिका परिषद के भीतर आने वाले सभी प्रतिष्ठानों से अनुरोध है कि वे सर्वेक्षण टीम को

सही जानकारी दें। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी उमर ने कल जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय फरारगंज और शोर पॉइंट में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को मजबूत, छात्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित सीखने के बेहतर अवसर प्रदान करना है। जिला परिषद अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाना, डिजिटल अंतर को कम करने और बच्चों के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर पैदा करने की दिशा में एक अहम कदम है। शिक्षा और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने कहा कि जिला परिषद शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता देती रहेगी। इस अवसर पर निर्माण और विकास समिति के अध्यक्ष पीए शरफुद्दीन, फरारगंज जिला परिषद सदस्य अब्दुल बशीर और शोर पॉइंट की जिला परिषद सदस्य धना रेखा के अलावा शिक्षक, छात्र, अभिभावक और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों में से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने के नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये नोटिस झूठा और अनधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण और मध्योत्तर अंडमान जिले के तहत प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती के लिए स्थानीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर शाम 5 बजे तक है। किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, सड़क बंद और राष्ट्रीय खेल दिवस। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार IRBN अंडमान निकोबार पुलिस के टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स की व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक की सड़क कल से 28 अगस्त तक सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। इस दौरान आम जनता से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के हिस्से के रूप में उप शिक्षा कार्यालय विम्बरलीगंज की ओर से स्कूली छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अंडर 17 वर्ग के लड़कों के लिए अंतर स्कूली हॉकी टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। रोड रेस 29 अगस्त को सुबह 6 बजे से मिनी स्टेडियम विम्बरलीगंज से आरम्भ होगा। इसमें केवल विम्बरलीगंज शैक्षणिक अंचल के स्कूली छात्र भाग ले सकेंगे। सूक्ष्म

0: लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के शाखा एमएसएमई कार्यालय श्री विजयपुरम को क्यारी के एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर से ICAR सिरकोट मुंबई के क्षितिज 2.0 स्टार्टअप इनक्यूबेशन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। ये कार्यक्रम एमएसएमई स्टार्टअप्स, नवाचारों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और नए विचारों वाले छात्रों के लिए खुला है। चयनित प्रतिभागियों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, फील्ड ट्रायल, तकनीक सत्यापन, बाजार की ज़रूरतों को समझना और बिजनेस मॉडल तैयार करना शामिल है। इच्छुक प्रतिभागी 25 अगस्त तक icarsirkot.incubate.app के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब और अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के समन्वय से कल रेड रन 5 किलोमीटर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 46 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य HIV से बचाव एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लड़कों की श्रेणी में अनिमेश उराव, सी मोहम्मद जसीम और लोहित राव ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि लड़कियों की श्रेणी में स्तुति, हर्षिता और संजना शेष 3 स्थान पर रहे। शिक्षा विभाग के सहयोग से राइट्स फॉर ऑल की अध्यक्ष रुबीना सिद्दीकी ने कल राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में संस्थानों और प्रमुखों शिक्षकों के लिए पहुंच पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान और विम्बरलेगंज क्षेत्र के 224 प्रतिभागियों ने ऑफलाइन मोड और बाहरी क्षेत्रों से लगभग 380 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगर पालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वार्डों के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कल से सर्वेक्षण शुरू करेगी। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष ने कल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। व्यवहारिक प्रशिक्षण के चलते गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक की सड़क कल से 28 अगस्त तक बंद रहेगी और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के तहत अंतर स्कूली हॉकी टूर्नामेंट कल से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए देश रागिनी कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, देशरागनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम संगीत के माध्यम से अपनी मातृभूमि की संस्कृति, माटी की खुशबू और अमर देशभक्ति को नमन करते हैं। श्रोताओं, हमारे देश का इतिहास ऐसे वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने जीवन देश के नाम कर दी है।

श्रोताओं, भारत की असली ताकत इसकी संस्कृति, शांति का संदेश है। हमने दुनिया को सिर्फ प्यार और सम्मान देना सिखाया है इस देश को। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, वतन की मिट्टी का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति हमारी मोहब्बत हर पल हर सांस में बहती है। एक देशवासी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसकी सबसे बड़ी दुआ यही होती है कि उसका वतन हमेशा मुस्कुराता रहे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको कुछ सुरीले नगमे सुनाने जा रहे हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की मिली जुली आवाज़ों में आई मिलन की बेला फिल्म का गाना, बोल शैलेंद्र के संगीत, शंकर जयकिशन का।

0: एहसान तेरा हो गा मुझ पर।
1: श्रोताओं, अब सुनिए जंगली फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, रचनाकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: श्रोताओं अब सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में पड़ोसन फिल्म का गाना। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में समय हुआ है सवेरे के 7:47। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं झुक गया आसमान फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावित

0: हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारतीय क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए।

0: तीन अन्य घायल हो गए। बीवाईसी ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में चार मजदूर मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के 2 ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर

0: के पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है। बोले, चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार, कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की एलएलबी, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under 20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country.

तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले पेश है उदित नारायण की आवाज में ये गजल।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाए, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: इंडिया'स ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
3: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और अब लीजिए सुनिए अनुप जलोटा के स्वर में इसरार अंसारी का की रचना।

श्रोता, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अनूप जलोटा और हे ए हरिहरन की आवाज़ों में चंद गज़लें।

प्यारे नन्ही दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास बाल जगत कार्यक्रम में। मैदान पर पसीना बहाने वाली हर खिलाड़ी को और घर घर में अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली हर भाई बहन को हमारा बहुत सारा प्यार। और मैं हूँ आपकी रीता दीदी। दोस्तों, आज आसमान में सावन की फुहारे हैं, कलाई पर सजे रेशमी धागों की चमक है, और बात जब रक्षाबंधन की हो तो जिक्र सुरक्षा और विश्वास का आता है ना। लेकिन आज हम इस त्योहार को एक बिल्कुल ही अलग और अनोखे अंदाज में देखने वाले हैं। खेल, अनुशासन और रक्षाबंधन का मेल। खेल के मैदान पर सिर्फ ताकत या हुनर से मैच नहीं जीता जाता, बल्कि मैदान पर टिके रहने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आइए इसी अनुशासन के जज्बे को सलाम करते हुए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां खेल हमें मैदान पर अनुशासन सिखाता है, वहीं रक्षा बंधन का धागा हमें एक दूसरे की रक्षा और साथ निभाने का अनुशासन देता है। आखिर एक अच्छे खिलाड़ी की तरह जीवन की हर चुनौतियों का सामना कैसे करना है और यह पवित्र रिश्ता हमें क्या सिखाता है, यही सब जानेंगे आज के खूबसूरत कार्यक्रम में। और साथ ही दोस्तों, आज आपकी करवाएंगे हम मुलाकात

आपकी नन्ही दोस्त से और जानेंगे खेल और अनुशासन विषय पर उनके प्यारे से विचार। तो दोस्तों आप अपने रेडियो सेट के पास ही रहिएगा। सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसा गाना जो जोश भी भर दे और रिश्तों की मिठास भी भूल दे।

किया था वादा, मिलवाएंगे नन्हे दोस्त से आप सभी को। तो देर ना करते हुए ले चलते हैं आपको आपकी प्यारी दोस्त के पास।

मेरा नाम आस्था कुमारी, मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्यारह शर्मा की कक्षा सातवीं की आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हम बच्चों के दिल के सबसे करीब है। जरा सोचिए, सुबह आँख खुलते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पढ़ाई, होमवर्क या खेलने का समय? जाहिर है दोस्तों, खेल का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आज का सवाल यह है, क्या खेल और पढ़ाई या खेल और अनुशासन दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर खेल खुद हमें सबसे बड़ा अनुशासन सिखाता है? हमें लगता है कि खेलना मतलब सिर्फ भाग दौड़ करना, पसीना बहाना और मौज मस्ती करना है। मम्मी पापा कई बार डांटते भी है कि दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ाई कब करोगे? लेकिन जैसे जैसे मैं खुद खेल के मैदान में उतरती, क्रिकेट और फुटबॉल के मैच खेलती, तब मुझे समझ आया कि मैदान केवल पसीना बहाने की जगह नहीं है, यह तो जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूल है। जरा सोचिए दोस्तों, जब हम मैदान पर उतरते हैं तो क्या बिना नियमों के खेल चल सकता है? कभी नहीं। फुटबॉल में हाथ से बॉल छूना फाउल है, क्रिकेट में क्रीज से बाहर निकलो तो स्टंप आउट। खेल हमें सबसे पहले सिखाता है नियमों का सम्मान करना, और सच कहो तो यही नियमों का पालन करना ही तो अनुशासन है। जो खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन नहीं करता, वह ना तो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और ना ही मैच जीत सकता है। ठीक वैसे ही जो इंसान जीवन के नियमों का पालन नहीं करता, वह सफलता की रेस में पिछड़ जाता है। आइए बात करते हैं कि खेल हमें असल जिंदगी के लिए कौन कौन से अनुशासन सिखाता है। क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को मैच शुरू होने के आधे घंटे बाद मैदान पर आते देखा है? अगर मैच सुबह 9 बजे का है तो खिलाड़ी 8:30 बजे रिपोर्ट कर देता है। वार्म अप करना, रणनीति बनाना, सब कुछ समय पर होता है। खेल हमें सिखाता है कि समय की कीमत क्या है। 1 सेकंड की देरी से गोल्ड मेडल हाथ से निकल सकता है। यही बात हमारी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होती है। खेल में कोई एक ही जीतेगा, कभी हमारी टीम जीतेगी तो कभी सामने वाली टीम जीतेगी। एक सच्चा खिलाड़ी हार को भी गले लगाता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अगले मैच के लिए दोगुनी मेहनत से जुट जाता है। यह मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन, हमें जिंदगी के हर एक मुश्किल दौर में संभाल कर रखता है। मैदान पर कोई अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। कैप्टन की बात माननी पड़ती है, कोच के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि बड़ों का आदर करना और टीम के साथ मिलकर चलना क्यों जरूरी है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पिछले साल हमारे स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स मीट था। मैं 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रही थी। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। मैं रेस से एक रात पहले भी देर तक जागती रही और सुबह सुस्ती में मैदान पर पहुंची। नतीजा क्या हुआ? जैसे ही सीटी बजी, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं 4th नंबर पर आई। मैं बहुत रोई। तब मेरे कोच ने मुझे एक बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, मेडल सिर्फ पैरों की रफ्तार से नहीं, बल्कि रात को समय पर सोने, सुबह समय पर उठने, अपने दिनचर्या में अनुशासन रखने से मिलते हैं। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। अब मैं खेल को भी उतनी ही गंभीरता से लेती हूँ जितनी पढ़ाई को। तो प्यारे दोस्तों, बात सीधी सी है, खेल और अनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू है। खेल हमें हंसना, लड़ना, गिरकर उठना और नियमों के दायरे में जीना सिखाता है। इसलिए चाहे आप मैदान पर हो या अपनी स्टडी टेबल पर, अनुशासन को अपना सबसे पक्का दोस्त बना लीजिए। मैदान का पसीना हमें मजबूत बनाता है और जीवन का अनुशासन हमें महान बनाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कविता की ओर और जानते हैं कि अनुशासन और खेल हमारे जीवन में कविता के माध्यम से कितना प्रभाव डालता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक कविता, खेल और अनुशासन। जीवन की इस कठिन डगर पर एक

0: नया संदेश सजाओ, खेलकूद और अनुशासन को अपने मन का मीत बनाओ। खेल सिर्फ मनोरंजन ना, यह जीवन की असली शिक्षा है। हार जीत से परे यहाँ पर मिलती सच्ची हर परीक्षा है। दौड़ धूप और पसीना बहता तन को फौलादी करता है। मैदानों की धूल में बच्चा ऊंचा उठना सीख ही लेता है। पर इसके संग जुड़ा नियम है जिसका नाम अनुशासन है। अनुशासन के बिना अधूरा हर एक वीर का जीवन है। समय पे आना, नियम निभाना, कप्तान की हर बात मानना, हार मिले धैर्य रखना, जीत पे ना कभी इतराना। अनुशासन की दौड़ थाम कर जो खिलाड़ी मैदान पे जाता है, किस्मत के ताले खुल जाते, वह हर बाजी जीत के आता है। लक्ष्य साधना, ध्यान लगाना, ये खेल हमें सिखाते हैं। गिरकर वापस उठना यारो हमको यही बताते हैं। छोड़ो आलस, मैदानों में अपनी एक पहचान बनाओ। खेल और अनुशासन को तुम जीवन का आदर बनाओ। दोस्तों, हमने पहले ही चर्चा की थी कि खेल और अनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां खेल हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं, वही अनुशासन हमें जीवन में सही दिशा और संतुलन प्रदान करता है। इन दोनों का तालमेल किसी भी व्यक्ति को सफल और बेहतर इंसान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। खेल का कोई भी मैदान नियमों के बिना नहीं चल सकता। फाउल, टाइमिंग, नियम खिलाड़ी को दायरे में रहकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना सिखाते हैं। खेल हमें समय की पाबंदी सिखाता है, जैसे कि प्रैक्टिस सेशन पर समय से पहुंचना और तय योजना के अनुसार खेलना अनुशासन की पहली सीढ़ी है। साथ ही टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाना, कोच के निर्देशों का सम्मान करना और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर टीम की जीत के लिए खेलना अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक अनुशासित खिलाड़ी जीत में अहंकार नहीं करता और हार मिलने पर निराश होने के बजाय अपनी कमियों से सीखता है। इसे स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर रणनीति बनाना खेल का मैदान सिखाता है, जो वास्तविक जीवन में भी काम आता है। मैदान पर मिलने वाली हर असफलता इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, जिससे वह जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं का डटकर मुकाबला कर पाता है। दुनिया के महान खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम या नीरज चोपड़ा प्रतिभा के साथ साथ अपने कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। खेल हमें दौड़ना सिखाता है और अनुशासन हमें सही रास्ते पर दौड़ना सिखाता है। जिस जीवन में इन दोनों का मेल हो जाता है, वहाँ सफलता निश्चित रूप से कदम चूमती है। आज के इस सफर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे यह विचार अच्छे लगे होंगे। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, खेलिए भी खूब और अनुशासित भी रहिए।
1: दोस्तों, आपकी दोस्त आस्था ने उनके प्यारे से विचार हम सभी के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से साझा किए। खेल जीवन में बस खेलने का मौका नहीं है, बल्कि अनुशासित रहकर जीवन में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर है। दोस्तों, खेल सिखाता है कि नियम में रहकर कैसे जीत हासिल की जाए, और रक्षाबंधन सिखाता है रिश्तों के नियमों को निभाते हुए कैसे पूरी उम्र साथ दिया जाए। जिस तरह एक कोच अपने खिलाड़ी को अनुशासित रहकर आगे बढ़ना सिखाता है, उसी तरह एक बहन अपने भाई को सही राह दिखाने की कोच भी होती है और उसकी सबसे बड़ी चीयरलीडर भी।
2: इंडिया ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload.

0: Download it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: मैदान पर जो पसीना बहाए वो सच्चा खिलाड़ी है, जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए वो भाई हमारा प्यारा है। अनुशासन से ही मिलती है मंजिल हर इंसान को, और रक्षाबंधन का धागा मजबूत करे हर अरमान को। दोस्तों, जब हम किसी महान खिलाड़ी को देखते हैं, चाहे वह मेजर ध्यानचंद हो, सचिन तेंदुलकर हो या नीरज चोपड़ा, तो हमें क्या चीज सबसे पहले आकर्षित करती है? उनका टैलेंट नहीं, उनका अनुशासन। समय पर प्रैक्टिस करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना और हार जीत दोनों को समान भाव से स्वीकार करना, बिल्कुल सही है ना दोस्तों? अनुशासन के बिना कोई भी प्रतिभा अधूरी है। जिस तरह एक फुटबॉल मैच में अगर खिलाड़ी नियमों को तोड़ दे तो रेफरी रेड कार्ड दे देता है, ठीक वैसे ही जिंदगी के खेल में भी अगर हम अनुशासन की सीमा पार करें तो असफलता का सामना करना पड़ता है, और यही अनुशासन हमें हमारे संस्कारों से मिलता है।

और हाँ दोस्तों, यहीं पर हमारे त्योहार जैसे कि रक्षाबंधन एक बड़ी भूमिका भी निभाता है। रक्षाबंधन का धागा सिर्फ एक सूत नहीं है, यह एक अनुशासित बंधन है, एक ऐसा बंधन जहाँ भाई और बहन एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की मर्यादा तय करते हैं। खेल का मैदान हो या परिवार का आंगन, दोनों जगहों पर नियम और स्नेह ही गाड़ी को सही रास्ते पर चलाते हैं। आसमान में बादलों की छांव है, चारों तरफ उत्सव का माहौल है और हर कलाई पर एक प्यारा सा धागा अपनी चमक बिखेरने

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा

गाना सुनकर यकीनन आप में से कई दोस्त अपने बचपन को बड़े ही नजदीक से देख पा रहे होंगे, है ना दोस्तों। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं है, यह एक ऐसा बंधन है जो दो दिलों को उम्र भर के लिए जोड़ देता है। और इतिहास के पन्नों में झांके तो चित्तौड़ की महारानी कर्मवती द्वारा मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजना इस बात का प्रमाण है कि यह त्योहार सिर्फ जाति धर्म या खून के रिश्ते से परे इंसानियत सुरक्षा और भाईचारे का सबसे बड़ा पैगाम है। एक बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो वह सिर्फ अपनी रक्षा का वचन नहीं मांगती बल्कि भाई के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती है। बिल्कुल दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में जहां भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं, रक्षाबंधन हमें एक ऐसा मौका देता है जहां हम अपनी बिजी शेड्यूल भूलकर अपनों के करीब आते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी आंधियां आ जाए, अगर बहन का हाथ सिर पर हो, भाई का सात पीठ पीछे हो, तो हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। दूरियां चाहे समंदर पार हो या कस्बों दूर, पर तैनात किसी फौजी भाई की तकनीकी और भावनाओं ने इन दूरियों को भी बहुत छोटा कर दिया है। आज हर उस भाई को हमारा सलाम है जो देश की सरहदों की रक्षा कर रहा है।

ताकि देश की हर बहन सुरक्षित महसूस कर सके और हर उस बहन को भी नमन जो दूर रहने पर भी अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगती है। सच्ची भावनाएं किसी माध्यम की मोहताज नहीं होती दोस्तों। अगर आपका भाई या बहन आपके पास है तो उन्हें कसकर गले लगाइए, गिले शिकवे दूर कीजिए और इस त्योहार को पूरी शिद्दत के साथ मनाइए। आइए इस प्यार भरे माहौल में सुनते हैं एक और सुरीला गीत।

तो आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन पर यह संकल्प लेना जरूरी है कि अपने जीवन के खेल में अनुशासन का दामन कभी ना छोड़े और अपने रिश्तों की डोर को हमेशा मजबूत रखें। आप सभी को हमारी आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से आने वाले रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अनुशासित रहिए और सुनते रहिए अपना।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आप सुनने जा रहे हैं उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन।

0: कुछ गीत दिल के बेहद करीब होते हैं, कुछ सुर यादों के अजीज होते हैं। जब फरमाइश आपकी और गीतों की बहारें हों तो हर पल जैसे खुशियों के करीब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वीकार कीजिए सोनिया का नमस्कार। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे हमारी यादों में बस जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी पसंद के गीत सुनने और अपनी फरमाइश पूरी फिजाओं में बिखेरने के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए नोट कीजिए हमारे नंबर, टेलीफोन नंबर है 2325558 या 2325540। एसटीडी कोड है 03192। श्रोताओं, चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने ही वाला है तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सफ़र की और जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, बताइए कौन सा गाना है आज के कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है मनोकामना और गीत के बोले तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, गायक बप्पी लहरी। और सबसे पहले गीत आपको कहने गीत उसे आपको पूरे भारत श्रोता को आकाशवाणी विजयपुरम में जोड़ अपने परिवार के रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को, सभी उत्कृष्ट भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, जानकारी आपको देना चाहता हूँ। कई बार मैंने फोन लगता है मैडम और उसके बाद रिंग जाता है लेकिन नहीं चाहते। आज मेरे कैसे का सबूत कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग लगा रहे हैं फोन तो आपके पास जा रहे हैं और कई बार लगाओ तो लग नहीं रहा है, तो कोशिश कीजिएगा मैडम जैसे गाने चलते तो ये नहीं कि गाना 2 या 3 सेकंड बचा रहेगा, आप बीच में भी उठा सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हेलो फोन बोले हैं, तो बोले कि इस गाने के बाद हम आपके फोन लेंगे तो आपको वेट कीजिए, जैसे ये गाना खत्म होगा तो हम आपको फोन के तुरंत उठाएंगे, फोन को काटिएगा मतलब सिस्टम बनाएंगे।
0: जी जी जी, जरूर जरूर, चलिए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: और म्यूजिक लवर्स में 7:30 बजे होता हूँ उनको भी बता दीजिएगा।
0: जी जी जरूर, चलिए अब सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।
1: जी मैडम जरूर बता दीजिएगा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, शुभ सकाल।
0: हेलो जी, नमस्कार। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ, कृपा सिंधु बर्मन।
0: जी जी, गुवाहाटी से फोन आया है।
1: हाँ
0: कैसा है
1: हाँ जी,
0: गुवाहाटी का
1: गुवाहाटी
0: मौसम?
1: आसाम आसाम हमारा स्टेट है,
0: हाँ जी
1: मतलब स्टेट का नाम है आसाम और गुवाहाटी हमारा शहर है।
0: जी जी जी कैसा है आपका शहर, कुछ बताइए हमारे सभी
1: अरे
0: श्रोताओं को।
1: सर तो बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे। हमारे यहाँ पे तो टी गार्डन ज्यादा अवेलेबल होता है,
0: हाँ जी
1: उसमें कड़कदार चाय, झायकेदार चाय पी जाते हैं सब लोग, और एक्सपोर्ट भी होते हैं मैम।
0: अच्छा, और हमारे यहाँ के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: जी, कभी कभी सुन लेता हूँ, कभी कभी क्या होता है, हमारे किराने का दुकान है तो इसी सिलसिले में मतलब बाकी कार्यक्रम सुन नहीं पाता।
0: अच्छा, तो आज कौन सा गीत है जो हम आपको सुनवा दें आज के कार्यक्रम में?
1: आज गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।
0: हाँ जी
1: जन्म तुमसे प्यार की लड़ाई में, जागा मैं अकेला रजाई में।
0: जी ये
1: और
0: गीत
1: कुछ दोस्तों को मैम दोस्तों को मैं बयां
0: डेडिकेट
1: कर
0: करना
1: सकता
0: चाहते
1: हूँ।
0: हैं जी, बताइए आपके दोस्तों के
1: जी,
0: नाम।
1: पहले है हमारे त्रिपुरा से हमारा आशुतोष दादा है, संगीता बोधी है, और है कैसी सिंह यादव, प्रेम सिंह सिसोदिया भजन शिल्पी है, वो भजन गाते हैं, और है हमारे उसका नाम क्या, धर्मवीर काकू है, और है उसका नाम क्या है, ये राम बाबू शर्मा है,
0: चलिए
1: वो बहुत अच्छे हैं,
0: जी, आप
1: और सब लोग सुनते हैं, सबके लिए और आपके लिए मैम।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर गुवाहाटी से आपने कॉल किया।
1: जी,
0: अब आपकी
1: ऐसे
0: पसंद
1: जी
0: पर मैंने प्यार क्यों किया, इस फिल्म का ये गाना हम आपको
1: जी
0: सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: मेरी प्यारी प्यारी मैम को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम गुनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: जी तनुश्री जी, कैसी हैं आप?
1: मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइएगा, गाने वगैरह सुनने का शौक रखती हैं?
1: शौक सुनने का भी है और गाने का भी है।
0: अच्छा, तो आज कौन सा आपका मनपसंद गीत है जो सबको सुनाना चाहती हो?
1: जी फिल्म का नाम है सबकी, उसमें गाना है

0: ये मैम गाना सुनना चाहती हो और सुनाना चाहती हो पहले आपको, फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमा जे, अविना जे, राकेश जे, शुमला से गंगाधर सावनकर जे, रमेश प्रजापति जे, प्रेम सिंह सिचरिया जे, आसाम से भाई है अमल भट्टाचार्य और लाइन सुन रहे उन सभी श्रोताओं के लिए।
1: जी जी तो तनुश्री क्या करती हो?
0: शास्त्रीय संगीत ही मैं सीखती हूँ।
1: अच्छा, शास्त्रीय संगीत में रुचि है आपकी।
0: हाँ
1: जी, और बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है?
0: मैम, मौसम तो कभी धूप निकल आती है कभी बारिश, मतलब वो सा दोनों दोनों मौसम है, मतलब धूप भी और बारिश भी, हम दोनों का मजा ले रहे हैं।
1: अच्छा, और रक्षाबंधन भी आने वाला है तो उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं?
0: मैम रक्षाबंधन तो मैं तो मतलब आकाशवाणी पर ही रक्षाबंधन मनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई नहीं है तो आकाशवाणी ही मेरे भाई, मेरा भाई है, सब कुछ है आकाशवाणी मेरा।
1: चलिए, इस कार्यक्रम के जरिए सभी श्रोताओं से बातचीत हो जाती है, सभी से दोस्ती हो जाती है ना, एक प्यारा सा रिश्ता बन गया है।
0: जी मैम
1: जी,
0: जी,
1: तो चलिए अब पूरी कर रहे हैं आपकी ये फरमाइश।
0: ओके बाय बाय।
1: बाय।

0: एमपी से सोनिया, मैं उनका भाई मांगीलाल चंदीर बोल रहा हूँ बहन
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
0: जी। बस आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, और
1: जी
0: मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी ठीक
1: जी
0: होंगे।
1: हम सभी यहाँ पर अच्छे हैं। और क्या कर रहे थे इस समय आप?
0: इस समय तो बहन जी आपका प्रसारण श्री विजयपुरम केंद्र का सुन रहा हूँ मैं, DTH के माध्यम से।
1: जी, और कैसे पहुंच रहे
0: जी
1: हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आप तक?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। DTH पे बिल्कुल, इतना तो मोबाइल पे तो लेट चलता है लेकिन DTH पे सही चलता है। DTH पे चलता है लेट तो, लेकिन रेडियो पे सही चलता है।
1: और
0: बढ़िया
1: कौन,
0: प्रोग्राम आ रहा है,
1: जी
0: बढ़िया आ
1: जी
0: रहा है
1: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम के?
0: बहन जी। हम तो ये फोन इन प्रोग्राम ही सुनते हैं, आपको बताऊं मैं क्या है इससे। एक तो हमारा मनपसंद गाना सुनने को मिल जाता है,
1: जी
0: और दूसरी बात जगह जगह के श्रोताओं से कॉल आते हैं हर प्रदेश से, तो
1: जी
0: उनके क्षेत्र के बारे में जानकारियां मिल जाती है कि वो कॉलर क्या कर रहा है, क्या करता है, और क्या व्यवसाय है उसका, मतलब और
1: जी
0: कैसा
1: जी
0: मौसम है,
1: जी
0: उससे सभी तरह की जानकारियां मिल जाती हैं पूरे भारत की आपके केंद्र सुनने से।
1: जी और वैसे भी जानकारियां तो हमें इंटरनेट से मिल जाती है, लेकिन जब लोगों के जुबानी वहां के बारे में जानने को मिलता है तो ज्यादा
0: जी
1: अच्छा लगता है ना?
0: ज्यादा अच्छा लगता है, वो तत्काल ताजी बात होती
1: हाँ
0: है।
1: जी, तो बताइएगा आपकी
0: जी
1: पसंद का गाना कौन सा है आज?
0: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा आराधना और गाने के बोल रहेंगे कोरा कागज था ये मन मेरा,
1: जी, बहुत ही प्यारा गीत है। किन दोस्तों को ये गीत सुनाना है आपको?
0: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, और मथुरा से शारदा प्रसाद जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, त्रिपुरा से हमारी भाई साहब हैं आंसू तोत जी, और बहन हमारी हैं संगीता देवनाथ जी, और तमाम सभी श्रोताओं को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा बहन जी।
1: चलिए सब मिलकर सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटी सी अंतराल के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओं, ब्रेक हो चुका है पूरा और हम फिर से हाजिर है एक बार हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ। इस सजीव प्रसारण में हमसे जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारे नंबर 2325588 और 2325400। STD कोड लगाना मत भूलिएगा 03192। चलिए दोस्तों, अब जुड़ते हैं हमारे आज के अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
4: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं सतीश बात कर रहा हूँ।
0: जी सतीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: मैं AP से बात कर रहा हूँ।
0: जी, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना आपने सोच रखा है?
4: आज सुनवा दीजिए दीवाने फिल्म का, कयामत कयामत की।

0: मैं काम करता हूँ, जैसे मनियार हूँ, बाबा चूड़ी वाले, तो मुझे कहीं चूड़ी बेचने जाता हूँ तो कहते हैं बाबा आ गया चूड़ी वाला, इसलिए बाबा चूड़ी वाला आ गया, तो मैं चूड़ी पहनाता हूँ। सावन के मौसम में मेरी बहुत बिक्री हुई थी, हरी हरी चूड़ियाँ बिकती हैं और सभी माताएं बहनें लेती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, ये चीज़ें बेचता रहता हूँ। साथ खाने वाला जो सामान है, घर घर जाके, द्वार द्वार जाके बेचता हूँ साइकिल से, बहुत अच्छा लगता है।
1: सभी जगहों पर जाना हो
0: और
1: जाता होगा आपका।
0: हाँ, जाना हो जाता है। अगर अच्छा मन चल रहे हैं कहूँ तो जाते हैं, तो हरी हरी हरी चूड़ियाँ, लाल लाल चूड़ियाँ, 17 चूड़ियाँ बिकती हैं, और लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह, ये चीज़ बिक जाती हैं। तो इस बिसात खाने का सामान है वो, क्लेचर वगैरह ये चीज़ें रखते हैं, जो सारे सारी चीज़ें रखते हैं बिसात खाना वगैरह, लेडीज का सामान पूरा, तो सब बिक जाता है।
1: जी
0: और
1: जी चलिए,
0: सेल करते
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छी बात है,
0: बाहर
1: और
0: बाहर।
1: आगे भी यही आशा करते हैं कि आपका जो काम काज है वो अच्छी तरह चलता रहे। अब सुनवा रहे हैं आपको,
0: हाँ,
1: आपको
0: अब
1: पसंद
0: पहले ही बोल
1: आएगी।
0: देते हैं बाबा, गांव में पुस्ते ही खान बोलते हैं, बाबा चूड़ी वाला आ गया, बाबा चूड़ी वाला आ गया।
1: अच्छा, तो
0: हाँ,
1: बहुत ही प्रसिद्ध है आपकी चूड़ियाँ।
0: चूड़ियाँ आपको चाहिए तो मैडम जी आपके यहाँ भेज दें, कोई
1: जी जी ज़रूर
0: ऐसी बात
1: ज़रूर
0: नहीं है।
1: बतवाएंगे, ज़रूर बताएंगे आपको। चलिए, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: और मैं दोस्तों का नाम लेना चाहिए, आपके इधर मौसम मौसम बता सकती हो?
1: मौसम जो है श्री विजयपुरम का मिला जुला मौसम रहता है। सुबह खिली धूप थी और मौसम बहुत ही सुहाना है, कभी बारिश हो जाती है, कभी हल्की बौछारें पड़ जाती है, तो यहाँ का मौसम हमेशा मिला जुला का ही रहता है।
0: मैडम जी, एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपके न्यू जोनियर एप्लीकेशन पे विविध भारती एप्लीकेशन आ गया है, तो उसमें मैं सुनता हूँ विविध भारती चलती रहती है, और जो स्थानीय कोई प्रोग्राम, जैसे लोकल प्रोग्राम आपके इधर से विविध भारती पे चैनल पे नहीं आते हैं?
1: मोबाइल ऐप के ज़रिए आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम।
0: हाँ, तो मोबाइल पे दोनों एप्लीकेशन आ गए, न्यू जोनियर जो
1: हाँ जी, न्यूज़
0: बोल
1: ऑन
0: मीडियम
1: एयर
0: बैंड
1: या
0: वाला,
1: ऐप पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं।
0: दोनों सुन सकते हैं, लेकिन
1: हाँ
0: जहाँ
1: जी,
0: विविध भारती वाला आ गया है और मीडियम बैंड वाला है, आकाशवाणी विजयपुर विविध भारती वाला, दोनों आ गए मोबाइल ऐप पे,
1: आ गए हैं,
0: लेकिन
1: उसमें आप
0: एक
1: सुन सकते
0: विविध
1: हैं।
0: भारती वाला, उसमें स्थानीय कोई प्रोग्राम नहीं आते हैं, खाली राष्ट्रीय सेवा आती है विविध भारती।
1: अच्छा, लेकिन
0: स्थानीय सेवा का आपको जानकारी होगी तो बता सकती हो।
1: ठीक, जी, बहरहाल हमारे और भी श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, सुनवा रहे हैं
0: हाँ,
1: आपको
0: तो
1: आपकी
0: दोस्तों
1: पसंद
0: का
1: का
0: नाम
1: ये
0: लेना
1: गीत।
0: चाहता हूँ मैडम
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: पहले
1: जल्द जल्दी से बता दीजिए।
0: राकेश हैं, शिमला से अनूप कुमार भट्टाचार्य जी हैं, और बसंती लाल सूर्यवंशी हैं, और जितने तमाम सुनने वाले हैं सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, और मैम आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ,
1: जी
0: कि
1: जी
0: बरसात के मौसम में अपना ख्याल रखें, और जाते जाते ख्याल रखें, भीगना नहीं चाहिए, भारी बीमारियाँ पनपती हैं तो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक देती हैं, तो अपना ख्याल रखें सबसे
1: जी
0: ज़्यादा।
1: जी मौसम के अनुसार खान पान का भी ध्यान रखिए, और
0: हाँ, खाने
1: आप
0: ध्यान
1: सभी
0: ध्यान
1: सेहतमंद
0: रखना
1: रहें,
0: चाहिए, और उसे
1: यही हम
0: खान
1: दुआ
0: पान में
1: करते
0: कोई कोई
1: हैं।
0: कचौड़ी पकौड़ी ये खाते हैं तो नुकसान कर जाती हैं, बरसात के मौसम ये अस करना चाहिए, खाना चाहिए अपना स्वयं ताज़ा भोजन खाना चाहिए, और भुंजा हुआ भोजन खाना चाहिए, तुरंत बासा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ मैडम जी।
1: जी
0: और
1: जी
0: रक्षाबंधन की
1: बिल्कुल,
0: ढेर ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरी आकाशवाणी टीम, क्योंकि बहनें बांधती हैं राखी वगैरह, तो ऐसे उनको बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और पैसे ऐसे मिलते हैं तो उनकी पॉकेट, भाई की पॉकेट खाली होती है, बहनों की पॉकेट भरी जाती है, तो अच्छा लगता है ऐसे में।
1: जी, हम सबकी ओर से भी आप सभी भाइयों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: हेलो फरमाइश। जय माता दी।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बगुला।
0: जी, राजस्थान से कॉल आया है
1: जी मैडम।
0: जी। पूर्ण वर्मा जी, क्या कर रहे थे? जी
1: बस मैडम कार्यक्रम में कॉल लगा रहा था और पहला कॉल लग भी गया था पर मैडम पता नहीं किसी कारण से कॉल कट गया,
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: फिर
0: लाइन
1: उसके
0: बिजी
1: बाद
0: रहती
1: आता।
0: है और नेटवर्क
1: जी
0: इशू भी हो
1: आता।
0: जाता है ना कभी कभी।
1: हाँ जी हाँ जी, तो आधा घंटा मेहनत करने के बाद फिर मिला नहीं, पहला कॉल आता था तो क्योंकि मैं खाना खाता हूँ उसके बाद अब खाना खाऊंगा मेरा कॉल लगता है, पहला कॉल लग जाता तो खाना भी खा लेता मैं। जी
0: अच्छा, तो आज के प्रोग्राम में कौन सा गाना आपने सोचा है?
1: जी मैडम, सबसे पहले तो आपको और तमाम सुनने वालों को रक्षाबंधन का पावन अवसर, भाई बहन का पावन अवसर आ रहा है तो उसकी तमाम जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन श्रोताओं के लिए सद्भावना देना चाहता हूँ मैडम।
0: हाँ जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन सा गाना है?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा अंधा कानून और उसमें गाने के बोल रहे हैं मेरी रहना दीवान, ऐसा कुछ गाना है वो सुन।
0: जरूर सुनवाएंगे ये गीत। और अपने वहाँ पर राखी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं रक्षाबंधन की?
1: जी मैडम, रक्षाबंधन की तैयारी हो रही है, बाजारों में बाजार सजे हैं और खरीदारी अब से ही चालू हो गई मैडम, कई बार थोड़े महंगाड़ा हो जाता ना रक्षाबंधन पे, तो इसलिए 8-10 दिन पहले से ही तैयारी हो जाती है मैडम।
0: जी, चलिए अब पूरी कर रहे हैं आपकी
1: तो फिर
0: फरमाइश।
1: दोस्तों को याद कर सकते हैं।
0: जल्दी से याद कर लीजिए दोस्तों को, और अगली बार से उनको कहिएगा कि वो भी कॉल करें ताकि हमें भी नए दोस्तों से बातें करने का मौका मिले।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने क्योंकि नए नए दोस्तों से और उनसे जानकारी भी मिल जाती है मैडम।
0: जी,
1: और
0: बिल्कुल बताइएगा।
1: तो सबसे पहले तो आप हैं
0: हाँ जी
1: और पूर्णिमा मैडम स्कूल लाइफ से और शिमला से राकेश से भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, वालोवाड़ है और अमल, बिमल, गोल्डी भाई, धर्मवीर और जितने भी कॉलर लाइव मेरे बाद में कॉल लगे उन श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ मैडम।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश। हेलो
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोना मार्ग से।
0: कश्मीर से कॉल आया है?
1: हाँ जी
0: जी, सबसे पहले तो गाना

0: कश्मीर
1: दीजिए,
0: से। फिल्म
1: सबसे पहले गाना बता दीजिए आपकी पसंद का।
0: का नाम है धर्म, फिल्म का नाम है धर्माता, क्या खूब लगती हो,
1: जी, जरूर सुनवाएंगे ये गीत।
0: ये
1: अब
0: वाला गाना है।
1: जी, आपकी पसंद का ये गीत जरूर सुनवाएंगे। कश्मीर के बारे में हमारे सुनने वाले
0: और
1: सभी
0: मेरी
1: श्रोताओं को जरा बताइएगा, कैसा मौसम है अभी कश्मीर का?
0: आज कल मौसम सुहाना मौसम है। हाँ सुहाना मौसम है, आज सुबह से बारिश है, अभी 9 तक अभी मौसम तो ठीक हुआ।
1: अच्छा, और सैलानी वहां पर
0: हाँ
1: घूमने जाते हैं?
0: यहाँ सोनमर्ग में आजकल तो कम ही आते हैं, यात्रा का सीजन चल रहा था ना,
1: और
0: अभी तो कम ही आ रहा था,
1: जी,
0: अभी
1: और
0: तो लगभग सितंबर अक्टूबर में आजकल टूरिस्ट यहाँ पे आएगा
1: जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या करते हैं आप?
0: यहाँ पे। बस
1: आप क्या करते हैं?
0: खेती किसानी।
1: खेती किसानी करते हैं? अभी खेतों में क्या लगाया है आपने?
0: हाँ जी आज यहाँ पे मक्का और धान, और सितंबर में फसल काटने का टाइम है।
1: जी, कश्मीर तक हमारे कार्यक्रम

0: तो हाँ ना मौसम है, हाँ तो ना मौसम है, आज सुबह से बारिश अभी न होता, अभी मौसम तो ठीक हुआ।
1: अच्छा, और सैलानी वहां
0: हाँ
1: पर घूमने जाते हैं?
0: यहाँ सोनमर्ग में आजकल तो कम ही आते हैं, यात्रा का सीजन चल रहा था ना,
1: और
0: अभी तो कम ही आ रहा था,
1: जी,
0: अभी
1: और
0: लगभग सितंबर अक्टूबर में आजकल टूरिस्ट यहाँ पे आएगा
1: जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या करते हैं आप?
0: यहाँ पे, बस
1: आप क्या करते हैं?
0: खेती किसानी।
1: खेती किसानी करते हैं? अभी खेतों में क्या लगाया है आपने?
0: हाँ जी, आज यहाँ पे मक्का और धान, और सितंबर में फसल काटने का टाइम।
1: जी, कश्मीर तक हमारे कार्यक्रम कैसे पहुंच रहे हैं? आप सभी को कैसे लगते हैं?
0: बहुत अच्छा, मैं यहाँ मोबाइल ऐप पे भी सुनता हूँ।
1: चलिए,
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा लगा आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया।
0: और मेरे साथी कुछ,
1: हाँ जी,
0: और साथी है कुछ,
1: अच्छा, साथियों को याद करना चाहते हैं, बताइएगा।
0: दिल्ली से धर्मवीर अंकल और राकेश कुमार और भगवान सिंह परमा, रमेश प्रजापति और गजराज लोधी।
1: चलिए, सबके साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।
0: शुक्रिया शुक्रिया मैडम, थैंक यू।

0: सबकी दिलों का जान, आपका जाना आपका माना, आकाशवाणी हेलो परमेश का दीवाना। मैं महाराष्ट्र जलगांव से उम्मीद चांद नक्सरा मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते। बहुत ही शेरो शायरी के साथ में आपने शुरुआत की है,
0: हाँ मैडम।
1: तो शेरो शायरी का शौक रखते हैं?
0: हाँ मैडम, शेर शायरी का शौक रखता हूँ और मैं तो रेडियो का बहुत पुराना श्रोता हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने फोन कॉल लगाया, क्योंकि एक्चुअली मैं सोचा कि प्रोकोटर में फोन कॉल का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं उसको याद किया और उसको नंबर मिलाया और मेरा फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बता दीजिए, आपकी पसंद का गाना कौन सा होगा आज?
0: मैडम मूवी का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे रेडियो पे बातें करना बड़ा ही अच्छा लगता है मैम।
1: जी, लेकिन अभी समय की कमी है, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे आपसे। सुनवा रहे हैं ये
0: वैसे
1: गीत आपकी
0: तो
1: पसंद
0: मेरा
1: पर।
0: फोन कॉल तो लग ही जाएगा, क्योंकि प्रत्येक श्रोता लोग तो सुन रहे हैं कि ये बहुत पुराना श्रोता है उमेश चौहान, तो सब सुनकर बहुत खुशी हो रही होगी सबको।
1: जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं और सुनवाते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।
0: ये गाना मैडम मेरा भाई दिनेश चौहान और सबके लिए।
1: चलिए।

दोस्तों, आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि मिलते रहेंगे गीतों के बहाने, सजते रहेंगे यादों के अफसाने। आप फरमाइश करते रहिए यूं ही, हम सुनाते रहेंगे बेहतरीन तराने। इसी उम्मीद के साथ अब आपकी रेडियो दोस्त सोनिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जनता जंक्शन। यहाँ हम सिर्फ स्टूडियो में बैठकर आपसे बातें नहीं करते, बल्कि पहुँचते हैं आपके बीच, आपकी पसंदीदा जगहों पर आपसे रूबरू होने और आपकी बातें जानने। तो इस खास सफर में कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ सोनिया, मेरे साथ हैं श्रीविद्या और कुमारी मीनू।
1: इस बार हमारी जनता जंक्शन टीम पहुंची है नेचर पार्क में, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की खूबसूरती, हरियाली और सुकून के बीच हम मिलेंगे कुछ नए दोस्तों के साथ। वैसे इस जगह का एक पुराना परिचय भी है, कभी यहां हेडो जू हुआ करता था, समय के साथ स्वरूप भी बदला।
2: तो चलिए जानते हैं यहाँ घूमने आए लोगों से कि उन्हें यह जगह कैसी लगती है, इस जगह से उनकी क्या यादें जुड़ी हैं, और अगर उन्हें अपने दिल का कोई गीत रेडियो पर सुनाने का मौका मिले तो वो कौन सा गीत चुनेंगे। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और शुरू करते हैं जनता जंक्शन नेचर पार्क स्पेशल।

0: नमस्कार, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं।
1: मेरा नाम डी विनीश है। मैं अभी खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी 10वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे साइंस और खासकर स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट है।
0: जी, साइंस और स्पेस में आपकी बहुत रुचि है, तो आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरे हिसाब से ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। चंद्रयान 3 की सक्सेस देखकर हम जैसे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम साइंस और स्पेस के फील्ड में कुछ आगे कुछ कर सकते हैं।
0: अच्छा, अगर फ्यूचर में आपको स्पेस रिसर्च के फील्ड में काम करने का चांस मिले तो आप किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहेंगे?
1: मैं मून पर पानी और वहाँ मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में रिसर्च करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि फ्यूचर में इससे स्पेस मिशंस के लिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है आपकी। हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर आप भी स्पेस के फील्ड में कुछ अच्छा करें और अपने देश का नाम रोशन करें। जी, बातें हो गई स्पेस और साइंस के बारे में, तो कुछ म्यूजिक भी हो जाए। बताइए कि कौन सा गीत है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ सुनना चाहेंगे?
1: मैं यूं ही चला चल सुनना चाहूंगा।
0: थैंक यू विनीश हमसे बात करने के लिए, और आपको आपकी पढ़ाई और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हेलो सर
1: हेलो
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं।
0: जी, आपका शुभ नाम?
1: सुनील कुमार।
0: अच्छा सर, आप यहाँ अक्सर आया करते हैं क्या?
1: मैं अक्सर यहाँ पे घूमने आता हूँ क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है और जिंदगी की भाग दौड़ से दूर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ बैठने से स्ट्रेस दूर हो जाता है और यहाँ हरे बड़े पेड़ है, हरियाली है तो मन को बहुत सुकून मिलता है यहाँ।
0: जी सर, आप क्या कहते हैं, ये नेचर पार्क हर शहर में होना जरूरी है क्या?
1: देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा नेचर पार्क जो है हर शहर में होना चाहिए क्योंकि आजकल का जो लाइफ है हमारा भाग दौड़ का है और इसमें आदमी क्या थोड़ा शांति चाहता है तो ऐसे नेचर पार्क हर शहर में होने से क्या है आदमी थोड़ी देर वहाँ बैठ के अपने आप को स्ट्रेस से दूर हो सकता है।
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपका कुछ मनपसंद गीत हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे क्या?
1: मेरा जो मनपसंद गीत है वो है पंछी सुर में गाते हैं।
0: जी, धन्यवाद सर।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्कार
0: जी, आपका नाम जानना चाहेंगे?
1: मेरा नाम प्रियांशी है।
0: प्रियांशी, कहाँ रहती हो?
1: मैं हैडो में रहती हूँ।
0: क्या करती हो प्रियांशी आप?
1: मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ।
0: तो यहाँ नेचर पार्क में घूमने के लिए आई हुई है?
1: जी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ।
0: तो शाम का समय है और यहाँ का वातावरण भी बहुत खूबसूरत है, तो आपको यहाँ पे खास बात क्या लगती है जो आप यहाँ पर आई है?
1: सबसे खास बात ये लगती है कि यहाँ बहुत शांति है और सारी जगह हरियाली है, इतने सारे पेड़ पौधे है और यहाँ से नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है, इसीलिए मुझे यहाँ आना अच्छा।

0: पहली बार आई है या हमेशा आती रहती है?
1: मैं हमेशा आती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आ जाते हैं।
0: अच्छा, तो गाने वगैरह सुनने का शौक रखती हैं आप?
1: जी हाँ, सुनती हूँ, नए पुराने सारे तरह के गाने
0: जी। हमारा एक कार्यक्रम है जनता जंक्शन, तो इस कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
2: मुझे थ्री इडियट्स मूवी का कोई भी गाना सुनवा दीजिए।
0: ये जो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: हेलो बेटा।
1: हेलो आंटी,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ।
0: अच्छा, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम हर्षिका पांडे है।
0: हर्षिका जी, आप यहाँ घूमने आए हो?
1: हाँ, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आज घूमने आई हूँ। कभी कभी मैं आती हूँ।
0: कैसा लगता है आपको नेचर पार्क?
1: बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग को एक्टिविटीज भी देते हैं, और मेरी को यहाँ की जो नेचर है बहुत अच्छी लगती है। मेरी बहन भी यहाँ पे आती तो उसको भी अच्छा लगता है यहाँ पे आना।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कोई मनपसंद गीत आप सुनाना चाहेंगे क्या?
1: हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग बम बम भोले है।

0: जगह बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन लोगों से जुड़ने का हमारा अंदाज वही रहता है।
1: तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज का हमारी टीम का इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: मिलते हैं फिर किसी नई जगह, कुछ नए लोगों और उनकी पसंद के गीतों के साथ।
1: तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन। प्रस्तुति थी सोनिया विश्री विद्या और कुमारी मीनू की, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी रेवगीश्वरी।

0: संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम की ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा।
1: वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है। मैं उनके साथ जाया करता था, तो उनकी जो लगन थी काम करने की वो बहुत देखने लायक थी। और बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे
0: जी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गजल। आज के फनकार हैं विशु भटनागर और गुलाम अली। तो आइए पहले सुनते हैं विशु भटनागर की आवाज़ में कतिल शिफाई की लिखी ये रचना।

गजल इसलिए जरूर सुनाना है, सिर्फ तीन शेर इसके, फिर कभी पता नहीं कब मौका मिले। मैं पेश कर रहा हूँ ये गजल सैयद नासिर।

ये गजल इसलिए जरूर सुनाना है, सिर्फ तीन शेर इसके, फिर कभी पता नहीं कब मौका मिले। मैं पेश कर रहा हूँ ये गजल सैयद नासिर काज़मी, ये गजल है

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में पेश है मोमिन खान मोमिन की लिखी ये गजल, फनकार हैं गुलाम अली।
1: मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खान मोमिन की गजल है, जिसका मतलब है, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

श्रोताओं, गज़लों पर आधारित ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आज के फनकार थे विशु भटनागर और गुलाम अली।

0: श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम घर संसार।

बहनों, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जी हाँ, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है।

0: दिमाग से बनाए रिश्ते सिर्फ बाजार तक चलते हैं, दिमाग से बनाए रिश्ते सिर्फ बाजार तक चलते हैं, और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। नमस्कार बहनों, हमारे दिल के इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा, आपका अपना कार्यक्रम घर संसार लेकर, जहाँ आज हम करेंगे ढेर सारी बातें और सुनेंगे प्यारे प्यारे गीत। आइए इस सुविचार के बाद यहाँ एक छोटा सा विराम लेते हैं।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: बहनों चलिए आज आपसे सेहत की कुछ बात करते हैं और हमारी डॉक्टर सीमा दास से हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर सीमा से हमने बातचीत करी आंखों की सुरक्षा और नेत्रदान के विषय में। आइए उनसे हुई ये बातचीत हम मिलकर सुनते हैं। बहनों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा दास। आइए आज उनसे आंखों की सुरक्षा, उसकी बीमारियों और नेत्रदान के बारे में कुछ विशेष बातें की जाए। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं?
2: आँखों की देखभाल हमें अपना शरीर का देखभाल करके ही हम कर सकते हैं, जिसके लिए संतुलित आहार, एडिक्वेट हाइड्रेशन, धूप से बचना, सिंपल सनग्लासेस यूज़ करना, समय समय पर अपने डॉक्टर से जांच करवाना, स्क्रीन यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, इन सब से जितना दूरी हम बना सकते हैं उतना बना कर रखना, और जैसे कि शारीरिक बीमारियां जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इन सब से होने वाली बीमारियों से अवेयर रहना जो हमारे आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आँख की देखभाल कर सकते हैं।
0: डॉक्टर, आपने यहाँ पे लैपटॉप शब्द का इस्तेमाल किया, मैं जानना चाहूँगी कि आज जो है ज़माना बदल गया है, बच्चे लैपटॉप और फ़ोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आँखों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि उसका इस्तेमाल आप रोक नहीं सकते, ये नई टेक्नोलॉजी है, तो क्या करा जाए जिससे कि हम उसका इस्तेमाल भी कर सकें और साथ ही साथ आंखों को सुरक्षित भी रख सकें?
2: बिल्कुल, आपने जैसे कहा है कि हम इसका इस्तेमाल, इन सारे स्क्रीन का इस्तेमाल रोक नहीं सकते क्योंकि ये हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन चुका है जी। तो लेकिन हमें इसे सही तरह से इस्तेमाल करना, चाहे कोई भी स्क्रीन हो, छोटा जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैब, या फिर बड़े स्क्रीन जैसे लैपटॉप हो गए, इवन टीवी स्क्रीन्स, इन सब चीज़ों से हमें प्रॉपरली हमें इस्तेमाल करना है। जैसे मेन होता है 20-20-20 रूल फॉलो करना। 20-20-20 मतलब कि हर 20 मिनट के काम के बाद आपको एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, जिसमें आप 20 फीट दूरी के किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करें अपने इन स्क्रीन से नज़र हटाकर। इन सारे स्क्रीन से बीमारियां बहुत सारी होती है, जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम

0: बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आँख ही नहीं, साथ साथ हमारे कंधों के मसल्स, पीठ के मसल्स, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना और प्रॉपर ब्रेक्स में काम करना, और बच्चों में खास करके आप जब भी इन्हें इस तरह के स्क्रीन्स देते हैं तो आपको पूरी निगरानी में देना है, अंधेरे में खास करके इन स्क्रीन से दूर रहना है. और अगर आपके आंखों में कोई तकलीफ़ होता है इन सारे स्क्रीन्स के यूज़ के दौरान, जैसे कि आंख में रूखापन होना बहुत कॉमन होता है, आंख में ड्राइनेस होना, अगर ये ऐसा होता है तो आपको अपने आई डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करना होगा.
1: बिल्कुल आपने सही कहा, 20-20-20 का अगर हम इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक हमारी आंखें बच सकते हैं. डॉक्टर, आपने कहा संतुलित आहार, तो आप क्या थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं जो आंखों के लिए बहुत अच्छा हो?
0: देखिए, संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, इसमें एडिक्वेट मात्रा में सब्जियां, फल, प्लस आंखों के लिए स्पेशली ऑरेंज फूड्स, जैसे बोलते हैं हम, कैरेट होता है, गाजर होता है, प्लस पपीता या फिर हरी सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, प्लस स्पेशल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा फैटी एसिड्स बोलते हैं, जो खास करके मछली में पाया जाता है. जो वेजिटेरियंस होते हैं वो इवन जो मछली वगैरह नहीं खाते हैं वो कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स आते हैं वो खा सकते हैं, तो इससे आँखों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है.
1: डॉक्टर, एक और सवाल था कि आजकल कैटरैक्ट बहुत बढ़ गया है लोगों में, लेकिन जागरूकता भी बढ़ी है, पर उसके लिए भी क्या ये सारा भोजन जो है और ये कारगर है?
0: नहीं, कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड चेंज होता है हमारे लेंस में. कैटरैक्ट या मोतियाबिंद जो होता है उम्र के साथ साथ होना ही होता है. इन सब जो खाने पीने या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल से आप कैटरैक्ट तो नहीं हटा सकते. कैटरैक्ट का इलाज ऑपरेशन ही होता है और ये उम्र के साथ साथ आएगा ही. लेकिन कुछ दूसरे रीज़न से अगर कैटरैक्ट हो, जैसे कि डायबिटीज़ से होने वाले कैटरैक्ट्स या फिर मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशन, जैसे स्टेरॉयड इंड्यूस्ड कैटरैक्ट कहते हैं, इन सब रीज़न से जो कैटरैक्ट होता है, तो वो इन पर्टिकुलर बीमारियों का इलाज करके हम उसके प्रोग्रेशन को या फिर उसके होने को हम डिले कर सकते हैं.
1: डॉक्टर, आपने जब पहली बात कही थी तब आपने कुछ बीमारियों का नाम लिया था, तो आप हमें बता सकती हैं कि आँखों में होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं?
0: देखिए, आँखों में होने वाली तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. बच्चों में कुछ अलग बीमारियाँ होती हैं, एडल्ट्स में कुछ और होती हैं, बड़े बूढ़ों में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. बच्चों से स्टार्ट करें तो एलर्जिक आई डिसीज़ेस काफ़ी कॉमन होते हैं. साथ में आजकल जैसे कि स्क्रीन्स का आपने डिस्कस किया था, तो वो उससे होने वाले रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत कॉमनली देखे जाते हैं. स्क्रीन्स ओवर यूज़ होने से आँखों में पावर आना, चश्मे लगना बहुत कॉमन हो गया है आजकल. उसके अलावा जैसे जैसे एडल्टहुड होता है तो मोतियाबिंद होना, सफ़ेद मोतियाबिंद जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, या काला मोतियाबिंद जिसको ग्लॉकोमा कहते हैं, जिससे आँख का प्रेशर बढ़ता है और आँख के नस में प्रॉब्लम्स होते हैं, ये काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं. प्लस जनरल कंडीशन जैसे कि रक्तचाप या फिर मधुमेह जैसी बीमारियाँ, इन सारे बीमारियों से भी आँखों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं.
1: तो इन सब बीमारियों का, जैसे आपने मधुमेह बोला, तो मधुमेह, ब्लड प्रेशर और एलर्जीज जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, कैंसर हो गया, ड्राइनेस हो गया, ट्यूमर हो गया, इन सब बीमारियों से आंखों पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नेगेटिव प्रभाव?
0: जैसे कि ब्लड प्रेशर हो जाता है, उक्त रक्तचाप होता है, या फिर डायबिटीज़ होता है, मधुमेह की बीमारियाँ, इन सब प्रॉब्लम्स को अगर हमने चेक में नहीं रखा, अगर ये अनकंट्रोल जाते हैं, बढ़े हुए रहते हैं, अगर आप समय पर दवाइयाँ नहीं लेते, अपने डॉक्टरों का इलाज बराबर से नहीं ले रहे हैं, तो इससे आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. जैसे कि आँखों के नस में इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है, जैसे आँखों के अंदर ब्लीडिंग होना, रेटिनोपैथी हो जाना, या फिर नस का पूरा कट ऑफ ही हो जाना, वेन ऑक्लूजन हो जाना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है अगर ब्लड प्रेशर या फिर शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहता है. साथ में जैसे आपने पूछा है कि कैंसर या फिर ट्यूमर्स, बॉडी हमारे शरीर के कोई भी पार्ट में अगर ट्यूमर होता है, जैसे अगर उसका इलाज नहीं होता है या किसी रीज़न से ये शरीर में फैल जाता है, तो आँख में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है.
1: क्या दवाइयों का भी प्रभाव पड़ता है हमारी आंखों पे?
0: जी हाँ, दवाइयों का प्रभाव ज़रूर पड़ता है. बहुत सारे दवाइयाँ होती हैं जो हमारे आंखों को नुकसान कर सकती हैं, खास करके स्टेरॉइड्स होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों में जिसका यूज़ होता है, तो इससे आंखों में आँख का प्रेशर बढ़ जाना या फिर मोतियाबिंद हो जाना समय से पहले,

0: ये बहुत ही कॉमन होता है।
1: अच्छा, एक और दुविधा होती है हमारे मन में कि अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे को आंखों के ऊपर अच्छे से पानी से छींटे मारनी चाहिए ताकि आंखें साफ हो जाए। ये किस हद तक सही है?
0: देखिए, आँखों का मैकेनिज़म्स अपना होता है, जैसे कि आँखों का अपना टियर प्रोडक्शन होता है, आँखों का ब्लिंकिंग मैकेनिज़म्स होता है, जिसे आँख अपने आप को खुद ही साफ़ कर देता है। उसमें आपको अलग से पानी ज़ोर से मारकर धोने की आवश्यकता नहीं होती है। पानी मारकर धोना तभी हम एडवाइस करेंगे अगर आपके आँख में गलती से कुछ चला जाता है, धूल या फिर कुछ कंकड़ चला जाता है, तो आप इनिशियली साफ़ पानी से हाथ नहीं लगाना चाहिए और साफ पानी से आप उसे वॉश कर लेना चाहिए। बट बिना प्रॉब्लम्स के ज़ोर ज़ोर धोना तो हम एडवाइस नहीं करते हैं।
1: तो डॉक्टर, अब हम थोड़ा सा नेत्रदान की बात करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, तो आपके मुताबिक ये पखवाड़ा इतना ज़रूरी क्यों है?
0: देखिए, हर साल हम 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में नेत्रदान पखवाड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसे नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट कहते हैं। इस पखवाड़े के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हैं नेत्रदान के लिए। नेत्रदान एक महादान है, जिससे आप किसी को जीवन दान कर सकते हैं उनको नज़र देके। ये सिर्फ मृत्यु के बाद ही पॉसिबल होता है।
1: क्या कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?
0: जी, कोई भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी नेत्रदान कर सकता है। इवन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से प्रभावित लोग भी कर सकते हैं, जिनके आँख में ऑपरेशन हो चुका है वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या फिर HIV और हेपेटाइटिस वाले।
0: देखिए, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें इस तरह के नेत्र का मे बी हम डोनेशन ले भी ले, लेकिन जब भी आई डोनेशन होता है, जब भी हम एक आँख रिट्रीव करते हैं, तो साथ साथ ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, जिसमें कुछ बीमारियों को स्क्रीन किया जाता है, जैसे HIV, जैसे आपने कहा HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी सी हो गया, या फिर बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, सेप्टिसीमिया बोलते हैं जैसे, अगर ये सब चल रहा है ये ब्लड से स्क्रीन हो जाता है। तो ऐसे आँख हम यूज़ में नहीं डालते हैं, ताकि ये सब बीमारी को फैलने से हम बचा सके।
1: मृत्यु के कितने समय बाद जो है नेत्रदान किया जा सकता है?
0: देखिए, जल्द से जल्द रिट्रीव करना एडवाइसेबल होता है। यूजुअली 6 से 8 घंटे का समय दिया जाता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आँखों में मृत्यु के बाद आँखों में न्यूट्रिएंट्स जाना बंद हो जाते हैं, जिससे आँख धीरे धीरे सिंक होने लगता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे रिट्रीव कर लेना चाहिए, ताकि अच्छा कॉर्निया उससे रिट्रीव हो सके। तो लेकिन 6 से 8 घंटा के अंदर ही हम नेत्र दान करते हैं।
1: एक और है बात कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम नेत्रदान करेंगे, मतलब अपने किसी रिलेटिव का या अपना भी नेत्रदान करेंगे, तो हमारी मृत्यु के बाद जो हमारा शरीर है वो अजीब सा हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है?
0: ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर जब नेत्रदान होता है, जब मृत्यु के बाद जब नेत्र निकाले जाते हैं, तो उसके जगह में हम एक प्लास्टिक शेल बैठा देते हैं, और जो बाहर से बिल्कुल भी डिसफिगरमेंट कॉज नहीं करता, और किसी और ये चेहरे से पता नहीं चलता कि इनका नेत्र निकाला गया है।
1: तो बेसिकली पूरा नेत्र निकाला जाता है कि कॉर्निया निकाला जाता है?
0: देखिए, पूरा नेत्र भी निकालते हैं, और लेकिन नेत्र पूरा निकालते हैं या फिर सिर्फ कॉर्निया भी निकालते हैं, बट उसमें यूज़ में तो हम सिर्फ कॉर्निया ही करते हैं। जो
1: अच्छा,
0: आँख के आगे का भाव होता है, अब है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, सिर्फ वो ही एट प्रेजेंट यूज़ में आता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम पूरा ही आईबॉल ही निकालते हैं, जिससे हम कॉर्निया रिट्रीव करते हैं, बट कुछ क्षेत्रों में सिर्फ कॉर्निया ही निकाला जाता है।
1: तो एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो उसके नेत्रों से और कितने लोग जो है देख पाते हैं?
0: देखिए, कॉर्निया जो होता है, हमारे आँख का जो आगे का भाग होता है, उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो आजकल का के इसमें क्या होता है कि हम सारे पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, उसके माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, एक आँख से ही 5 लोगों का भी फायदा हो सकता है।
1: और डॉक्टर, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि नेत्रदान का जो है प्रक्रिया क्या है, तो आप थोड़ा बताएंगी कि इसकी प्रक्रिया क्या है?
0: देखिए, क्योंकि ये मृत्यु के बाद ही होता है, तो अगर हम नेत्रदान करना चाहते हैं, तो अपने जीवन काल में हमें अपने नज़दीकी आई बैंक से रजिस्टर होना है। रजिस्ट्रेशन के

0: बाद वहाँ से आपको एक कार्ड दिया जाएगा जो आपको संभाल कर रखना है, बट साथ साथ आपको अपने नज़दीकी जो परिवार वाले हैं उनको अपनी ये इच्छा बतानी है। अगर किसी कारणवश आप रजिस्टर नहीं भी होते हैं तब भी नेत्रदान करना पॉसिबल है। आपके मृत्यु के बाद आपके परिवार वाले जो है किसी भी नज़दीकी आई डोनेशन सेंटर या फिर आई बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर वहाँ से डॉक्टर्स आकर आँख रिट्रीव कर लेंगे।
1: और डॉक्टर, अब हम जो है आपसे आखिर में यही सवाल करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं यही बोलना चाहूँगी कि नेत्रदान महादान है। आजकल टिश्यू डोनेशन में आ गया है, ऑर्गन डोनेशन नहीं रहा है, तो इसमें जो ऑर्गन डोनेशन वाले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो नहीं रहे हैं, तो बहुत ही इजी हो गया है। आपको ये समझना है कि हमारे मृत्यु के बाद भी अगर हम किसी का काम आ सके, किसी को हम अगर नज़र दे पाए, तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए हमारे मरने के बाद और क्या होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम के लिए सामने आए और अपने आप को रजिस्टर करें इस चीज़ के लिए।
1: तो डॉक्टर सीमा, आप हमारे पास आई और आपने अपना वक्त निकाला और हमें जो है आँखों के बारे में इतनी खास बातें बताई, नेत्रदान के बारे में इतनी खास बातें बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: बहनों, हमें आशा है कि डॉक्टर सीमा दास से हुई हमारी बातचीत के माध्यम से आपने आंखों के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल करी होगी। तो चलिए अब आंखों से जुड़ा एक प्यारा सा यहाँ गीत भी सुन लेते हैं।

0: बहनों आइए अब आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। मेरे जीवन की राह को वो आसान करे, मेरे जीवन की राह को वो आसान करे, मेरी हर उदासी को मुस्कान करे। धागों से कई ज़्यादा पक्का है उससे मेरा रिश्ता, धागों से कई ज़्यादा पक्का है उससे ये रिश्ता, मेरे जीवन में बन आया वो एक फरिश्ता। वो मेरा भाई है जो सुख दुख में साथ है, वो मेरा भाई है जो सुख दुख में साथ है, माता पिता के बाद वही मेरे हर पल साथ है। रक्षाबंधन का ये रिश्ता हम सदा निभाएंगे, रक्षाबंधन का ये रिश्ता हम सदा निभाएंगे, यूं ही लड़ते रहेंगे यूं ही प्यार लौटाएंगे, यूं ही लड़ते रहेंगे यूं ही प्यार लौटाएंगे। और बहनों इन पंक्तियों ने आपको बता ही दिया होगा कि हम 28 अगस्त को मनाई जाने वाली रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, जो कलाई पे बंधे रक्षा सूत्र से कई ज़्यादा मजबूत है। क्या आप जानती हैं कि हर श्रावण माह की पूर्णिमा को ये दिन मनाया जाता है, जब पारंपरिक रूप से बहनें अपने भाइयों को रोली चावल का तिलक लगाकर हाथों में रक्षा सूत्र बांधती हैं और इस स्नेहपूर्ण रिश्ते को और मजबूत करती हैं। बहनों ये रिश्ता दिल से जुड़ा है, जहाँ एक का दुख दूसरे के आंसू और एक की खुशी दूसरे की हंसी बन जाती है। तो आइए इस रिश्ते को खुशी खुशी मनाते हैं।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.

बहनों, इसी के साथ हमारा आज का घर संसार का अंक यहीं समाप्त होता है। तो अब आप अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार का। ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.vi.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातु

0: और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

36.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार तट के और उसके आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर

55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिस कारण समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 25 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। जन सेवाओं को कल सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एक आध स्थानों पर हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: विविध भारती FM श्री विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम

श्रोताओं, अब आपके लिए है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म डार्लिंग का गीत। आवाजें हैं अदनान सामी व तुलसी कुमार की। समीर के बोल संगीत है प्रीतम का।

सोनू निगम, अलका याग्निक, शान, उदित नारायण व मिली जुली आवाजों में ये गीत है श्रोताओं आवारा पागल दीवाना फिल्म से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

राहत इंदौरी का लिखा तथा अनु मलिक के धुनों से सजा ये श्रोताओं सुनते हैं फिल्म राम शस्त्र का गीत। आवाजें हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत लहरी का समय अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। समय 3 बजे हैं। अब आपके लिए है कार्यक्रम एल्बम टाइम और ये है आज का पहला एल्बम गीत जिसे गाया है हैरी आनंद ने।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। समय 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सोनिया, लेकर आई हूं आप हमारा विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दोस्तों, आज का हमारा सफर बेहद खास है। आज हम एक ऐसी अदाकारा के सफर पर निकलने वाले हैं जिनके खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती है, जिनके खूबसूरत नजरें और चुलबुली मुस्कान ने 60 से 70 के दशक के युवाओं के दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी। जी हाँ श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली ग्लैमर क्वीन सायरा बानो जी की। आज उनके जन्म दिवस पर उनको अनेकों नेक शुभकामनाएं। 23 अगस्त 1944 को जन्मी सायरा जी के रगों में कला बसती थी। सायरा जी ने अपनी पढ़ाई लंदन में की, लेकिन उनका दिल हमेशा भारतीय सिनेमा के लिए धड़कता था। और फिर साल 1961 में आया वो ऐतिहासिक दौर जब महज 17 साल की उम्र में उन्होंने शम्मी कपूर साहब के साथ फिल्म जंगली में कदम रखा, जिससे रातों रात वो स्टार बन गई। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

दोस्तों, फिल्म जंगली की सफलता के बाद सायरा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन जब भी सायरा जी के कैरियर की सबसे बेहतरीन कॉमेडी और यादगार फिल्म की बात होती है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, साल 1968 में आई फिल्म पड़ोसन। इस फिल्म में उनका बिंदु का किरदार, पड़ोस में रहने वाले सुनील दत्त साहब और उनके संगीत गुरु बने महमूद साहब के साथ नोकझोंक आज भी बेहद याद किए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये चुलबुला सा गीत।

अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बत्तूर भाई बत्तूर।

श्रोताओं, सायरा बानो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि आपने अपनी बेहतरीन अदाकारी, डांस और चुलबुले अंदाज से भारतीय सिनेमा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। उन्होंने खुद ही सिर्फ रोमांटिक गानों तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। फिल्म शागिर्द में जॉय मुखर्जी के साथ उनका गाना दिल विल प्यार व्यार ने साबित किया कि वो वेस्टर्न और मॉडर्न किरदारों में कितनी सहज थी।

श्रोताओं, साल 1975 में आई उनकी एक और बेहतरीन फिल्म झुक गया आसमान का एक गाना सायरा जी के समर्पण और उनके खूबसूरत आंखों की कहानी बयां करता है। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं अब ये बेहतरीन गीत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिन्ला मिनी रोक रहमांग इंगरी तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: Minka tilunhi ingilaharam taranne mahavat krajo ngnal gelhoi nikun banami. MV Street Island, chu mayabandar tadlikpur ipure, ida satkanro tabuhu nilik nyafin spechati, nga chawan min, ibtanet anay tani alaw nga jingit, ida sat kenro te buhi nar angtik lipur sek mai bandar anmin el tala kerana jusri Vijayapuram. Emi nalanda asun ngen

0: Tigiknya Eric Johnson antai ngam mana hangi tin ke ke na nyangam ti. Hoi ngat til ngang ne sin tangam hek inu de changrong ita kasat. Ita fan kan ro telah harap ngai yen.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. सजीवों, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल फंक्शन के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थ का अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया पाचन अवशोषण और स्वागीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा उत्कों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल है। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर को अच्छे तरह

से काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड्स प्रदान करता है। विटामिन, हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही जरूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारे शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रस्त हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ है जो आपके शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कोई बीमारी न आए। ज्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जी से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स एक अच्छे न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। ये न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मन प्रमुख भोजन पदार्थ है जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबुदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीन्स और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। फैट फैटी एसिड्स में पच जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है जो शरीर में पोषक तत्वों को परिवहन में मदद करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी न आने दे। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि सम्मान करने में योगदान करना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। संतुलन भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वर्कर्स के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानक के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है। स्वस्थ भोजन करने से सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका दिमाग भी तेज होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत रखता है। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरी सब्जियों और फल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाव करते हैं। खासकर वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है। जितना हो सके तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। इनको लगातार सेवन करने से तरह तरह के बीमारियां आ सकती है। पानी खूब पिए। शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण का कारण बनती है, दैट इज डिहाइड्रेशन, जिससे किडनी की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, उल्टी, बुखार और कई अन्य परेशानियां हो सकती है। शुगर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा शुगर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।

0: सकता है। इससे दांत खराब हो सकते हैं, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। उपवास करना शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, साथ साथ शरीर की कई अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि उपवास के दौरान आप नियमित रूप से पानी पीते रहे, फल ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम विच वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई गेट बैक टू यू इन आर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:23। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी। 6:30 पर कार्यक्रम होगा धरती के गीत, जिसमें आप राजस्थानी लोकगीत सुन सकते हैं। 6:45 पर देशगान प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30, जिसमें लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स आप सुन सकते हैं। रात 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका रेडियोस्कोप और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन ख्याल पेश किया जाएगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

25 मिनट पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा धान के कीट। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा जमी शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 340वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता। 6:45 पर वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत भी सुन सकते हैं। 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान, जो मीडियम वेव और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ दोनों में प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं बेला सावरे और नितिन मुकेश का गायन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा कल सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन होगा। गीत गाता चल फिल्मी गीतों से सजा ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कल दिन में 10:00। 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1346वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार गीत एक ही कलाकार कार्यक्रम के जरिए। 12:00 सुनिए तेलुगु कार्यक्रम, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप एक ही गायक के गीत भी सुन सकते हैं। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं। आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल दिन में 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के संग। 3:30 पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें कल फनकार होंगे नीना मेहता, राजेंद्र मेहता और चंदन दास। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5:00 आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का, और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। शाम 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में बातचीत होगी डॉक्टर SK वर्मा से। बातचीत का विषय रहेगा दीपों के लिए उपयुक्त चारा, घास व वृक्ष। 6:30 पर रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप मसाला। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है जमाने को दिखाना है फिल्म से। आवाज़ें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की है।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आनंद बख्शी की लिखी रचना। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म है सुहाग।

0: श्रोताओं, अगली और अंतिम पेशकश गुलशन बावरा के लिखे गीत को संगीत दिया आर डी बर्मन ने। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की और फिल्म है खेल खेल में।
1: अरे देख रहे हैं?
2: तो देखने दो।
1: जल भी रहे हैं?
2: अरे तो जलने दो।
1: खुली सड़क है बाबा।
2: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ, तो हो जाए
2: हो जाए।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம். வணக்கம் நேயர்களே.

0: दो लाख रुपए एट द यूटी लेवल एंड पांच लाख रुपए एट द नेशनल लेवल. सेलिब्रेट योर रूट्स, इंस्पायर द नेशन. जेम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग.
1: এবারে শুনবেন কিছু ছোটদের গান.

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है। श्रोताओं, अब समय है व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगनी का।

नमस्कार दोस्तों, संगीत संगिनी कार्यक्रम में मैं मंजीत आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखिए। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं रमनप्रीत कौर, कैंबल बेसी, इनकी फरमाइश पर प्यार में कभी कभी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश की है प्रेमनगर से रश्मि खजूर ने।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को, एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेज भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
0: श्रोताओं, अंतराल के बाद अब सुनते हैं कार निकोबार से जसिका की फरमाइश पर विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में दीवाना फिल्म का ये गीत।

0: Ricky.
1: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मैं आपकी फरमाइशी गीतों के सिलसिले को विराम देती हूँ। अगले रविवार संध्या 6 बजे हम आपके संदेशों के जरिए आपके पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगनी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थानी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब सुनते हैं देशगान।

0: श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दूं, 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30, जिसमें आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। रात 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

कल सुबह 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा जमी शीर्षक पर। सात बजकर 7:15 पर पेश किया जाएगा फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री

0: विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र का पसंदीदा केंद्र बनाने के लिए स्टार्टअप्स निरंतर प्रयास करते रहे। इंडिया स्किल्स 2026-27 के लिए पंजीकरण शुरू। अंडमान के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर। विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा विषय के साथ विज्ञान केंद्र में मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और कैंबलबे के शास्त्री नगर में बिजली आपूर्ति में अनियमितता के कारण संचार टावरों में आग लगने से फोन सेवाएं ठप हुई। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप से लगातार प्रयास करते हुए देश में मजबूत स्पेस इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा स्थान माने। प्रधानमंत्री ने कहा कि कम लागत, कुशल प्रतिभा और जोखिम उठाने की क्षमता भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में मदद कर सकती है। इस दौरान देश की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयर स्पेस के CEO पवन कुमार चांदना ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के प्रशिक्षण विभाग की ओर से देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2026-27 के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। ITI डॉलीगंज की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कौशल सीखे, अपना भविष्य संवारे की भावना के साथ देश की प्रतिभाओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। प्रतियोगिता में पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क है। ITI डॉलीगंज, बकुलतला और एरोंग के प्रशिक्षु, प्रशिक्षणार्थी, विद्यार्थी और युवा पेशेवर इसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद का होना चाहिए। वही कुछ विशेष कौशलों के लिए जन्म की सीमा 1 जनवरी 2003 या उसके बाद का रखी गई है। प्रतिभागी 50 से अधिक कौशल श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इनमें विनिर्माण और अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, निर्माण एवं भवन प्रौद्योगिकी, रचनात्मक कला एवं परिधान तथा सेवा क्षेत्र सहित कई अन्य क्षेत्र शामिल है। प्रतियोगिता के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल मानकों को समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। विजेताओं को नगद पुरस्कार और पदक भी प्रदान किए जाएंगे, साथ ही उन्हें विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक युवा स्किल इंडिया डिजिटल की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा हटा दी है। इस संबंध में राजपत्र में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई।

0: है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार जरूरी था। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन चैनल विज्ञापन पर काफी निर्भर है और अब टेलीविजन तथा डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और फोन सेवाएं ठप। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से परिचित कराना और उनमें वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता तथा अंतरिक्ष की खोज के प्रति रुचि बढ़ाना था। इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय था विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता और मध्य स्तर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। समारोह में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख सात्विकी पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख सात्विकी पाल ने इस अवसर पर कहा,
1: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 के अवसर पर इस वर्ष का थीम टुवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप की भावना के साथ भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति का उत्सव मनाया जाता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमें नवाचार, सहयोग और मानव केंद्रित विकास का संदेश देती है। वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, सामाजिक वैज्ञानिकों और समुदायों के बीच सहयोग के माध्यम से इस तकनीक और नीतियों विकसित कर सकता है जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास के लाभ पहुंचाए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें ये संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि विज्ञान और मानवता के समन्वय के माध्यम से एक समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे।
0: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के रचनात्मक क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर के डिजिटल रचनाकारों की पहचान करने, उन्हें निखारने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत की है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। इस चैलेंज में द्वीपों के 3 जिलों के रचनाकारों को जनजातीय संस्कृति, पर्यावरण, पर्यटन, स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक शिल्प और सामुदायिक उपलब्धियों सहित एमरल्ड आइलैंड की अनूठी पहचान प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रविष्टियां 31 अगस्त तक वेव्स पोर्टल पर स्वीकार की जाएगी। इसके तहत प्रतिभागियों को 1 से 3 मिनट की मूल डिजिटल सामग्री पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विजेताओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में कल से 7 सितंबर तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी मामलों की सुनवाई करेंगे। कैंबेल बे के शास्त्री नगर इलाके में बिजली आपूर्ति में अनियमितता के कारण एक साथ खड़े बीएसएनएल और अन्य टावरों में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में मोबाइल और फोन सेवा ठप हो गई। क्षेत्र के एसडीओ ने लोगों को आश्वासन दिया है कि अगले 48 घंटों के भीतर फोन सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 की सहायता अनुदान के लिए द्वीप समूह के पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके तहत प्रत्येक पात्र संगठन को ₹25,000 का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सांस्कृतिक संगठनों का द्वीप समूह में पंजीकृत कार्यालय, कला संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के संवर्धन में सक्रिय तथा न्यूनतम 1 वर्ष की

अवधि से कार्यरत होना चाहिए। इच्छुक संगठनों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन 15 सितंबर तक विभाग के निदेशक के पते पर जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म प्रशासन के वेबसाइट से डाउनलोड या कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र का पसंदीदा केंद्र बनाने के लिए स्टार्टअप्स निरंतर प्रयास करते रहे। इंडिया स्किल्स 2026-27 के लिए पंजीकरण शुरू। अंडमान के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर। विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा विषय के साथ विज्ञान केंद्र में मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और कैम्बलबे के शास्त्री नगर में बिजली आपूर्ति में अनियमितता के कारण संचार टावरों में आग लगने से फोन सेवाएं ठप हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
5: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
6: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
7: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
4: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
8: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
4: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
9: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
4: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
10: जन पॉलिसी जन कैयल।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
11: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
12: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:17 हुए। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। सबसे पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को सूचित किया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 1-2 स्थानों पर हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 35-45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है, इसलिए उन्हें 25 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV स्ट्रेट आइलैंड कल 24 तारीख को सवेरे 7 श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। अगले दिन 25 तारीख को सवेरे 7 ये जलयान डिगलीपुर से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। 26 तारीख को सवेरे 7 MV रंगत श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 27 तारीख को सवेरे 7 डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग 28 तारीख को सवेरे 7 श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान भी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। MV भारत सीमा 29 तारीख को रात 8 श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इस जलयान की वापसी होगी

अगले दिन 30 तारीख को दोपहर 2 बजे एम वी नालंदा 25 तारीख को दिन में 10 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। रात 9 बजे यह जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। यही जलयान 28 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और 29 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान की लिटिल अंडमान के लिए अगली यात्रा 30 तारीख को सवेरे 9 बजे होगी। रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापसी करेगा। एम वी भारत सीमा 27 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। उसी रात 8 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एम वी सेंटिनल 25 तारीख को दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए छूटेगा। अगले दिन 26 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एम वी कालीघाट 27 तारीख को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तरासा कचाल और नानकौरी होते हुए कैम्बल भी जाएगा। इस जलयान की वापसी होगी 30 तारीख को दिन में 12 बजे कैम्बल भी से इन सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए। एम वी कैम्बल भी 25 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैम्बल भी के लिए रवाना होगा। 27 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैम्बल भी से छूटेगा और नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

अब सुनते हैं जनसूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-233-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुई है। आप सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है, ये है जलवा फिल्म से, आवाज़ शान की है, गीत रचना सुधाकर शर्मा की और संगीत हिमेश रेशमिया का।

अगली पेशकश अन्नू मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार, समीर की लिखी रचना, स्वर दिया अलका याग्निक ने और फिल्म है चाइना गेट।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम युवाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 23 अगस्त है और आज हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, यह दिन भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियों और वैज्ञानिकों की मेहनत को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो ने देश को अंतरिक्ष विज्ञान में गौरवान्वित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान से संचार, मौसम, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी लाभ मिलता है। दोस्तों, यह दिवस युवाओं को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देता है।

0: तारा है।
1: दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज रविवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: दोस्तों, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325 और 2325 हमारा एसटीडी कोड है 03192। तो दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: जय माता दी
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान
0: जी।
1: गांव का नाम अंजमेल बुगला
0: जी। सबसे पहले जानते हैं पूरन वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ मैडम, आप सुनाओ।
0: जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैडम 4-5 दिन पहले बारिश शुरू हुई थी, अभी तो
0: अच्छा
1: गर्मी हो रही है, बादल छा रहे हैं पर बारिश का इंतजार है आपके उधर?
0: जी, यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश है अभी।
1: जी
0: जी
1: मैडम।
0: जी जी तो बताइए, ऐसे प्यारे से मौसम में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे पूरन वर्मा जी?
1: जी मैडम, सबसे पहले तो आपको श्रोताओं को पावन अवसर रक्षाबंधन का आ रहा, तो उसकी
0: जी
1: आपको तमाम आकाशवाणी टीम को श्रोताओं को शुभकामना मैडम।
0: जी धन्यवाद। और आपको भी हमारी ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पूरन वर्मा जी।
1: फिल्म का नाम
0: जी
1: रहेगा चंबल की कसम और गाने के बोल है भैया या बहना याद करे, ऐसा कुछ वो गाना है वो
0: जी।
1: लता दी की
0: अच्छा,
1: आवाज़
0: राखी
1: सुनना।
0: के ऊपर जो गीत है
1: हाँ जी, हाँ जी
0: चंदा
1: मैडम
0: रे, लता मंगेशकर जी का बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना। जी
1: जी।
0: जी तो
1: तो सबसे पहले आप हैं
0: जी
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, शिवालुवाड़ है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, संगीता जी है, रमेश पात्र है
0: जी
1: और अमल बिमल और रमेश प्रजापति भी है
0: जी
1: और गोल्डी भाई, अमर साहू और लाइव कॉलर सुनने वाले तमाम सुनने वालों के लिए।
0: जी तो आइए, हम आपको ये गीत भिजवा रहे हैं राजस्थान, सुनिए।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो म्यूजिक लवर।
0: जी, नमस्कार। मेरी किनसे बात हो रही है?
1: नमस्ते लता राज नंदिनी मैम, कैसे हो आप?
0: जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं और मेरी किनसे बात हो रही है, मैं जानना
1: मैं अच्छा
0: चाहूँगी।
1: हूँ मैम।
0: जी
1: माँ, काफी टाइम बाद में जुड़ा हूँ मैं। बिट्स पिलानी शहर जिला झुंझुनू राजस्थान से राहुल बात कर।
0: अच्छा, राहुल जी, काफ़ी समय बाद आपसे बात हुई। कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे मैम।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े इतने समय बाद। जी
1: जी मैम, क्योंकि
0: जी
1: लाइफ इज द रेस, लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता, कई बार समय नहीं
0: बिल्कुल
1: मिल पाता, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ें
1: व्यस्तता
0: हिस्सा
1: रहती है
0: होती।
1: मैम।
0: जी
1: हर
0: बिल्कुल
1: समय एक
0: बिल्कुल।
1: जैसा नहीं होता, कभी कुछ ना
0: अप्स
1: कुछ
0: एंड
1: देखना
0: डाउन्स।
1: पड़ता लाइफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप जीवन में हमेशा अच्छा ही करें। चलिए जी, तो वैसे
1: ये चीज मेरे लिए नहीं, सभी के लिए है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: सभी श्रोताओं के लिए जो भी आज
1: लाइफ
0: हमसे हमें
1: लाइफ
0: सुन रहे हैं।
1: बहुत बहुत लाइफ है ना, वो बहुत हार्ड है, इजी नहीं है। और लाइफ में पॉजिटिविटी रहना जरूरी है, किसी भी
0: बिल्कुल।
1: फील्ड में हो, सभी को साथ लेके चलना, और एक अच्छा एक मॉरल विक्ट्री भी लाइफ में हासिल करना बहुत जरूरी होती
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। जी, वैसे आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो कैसा बीत रहा है आपका दिन?
1: है। जी अच्छा ही बीता मैम। वैसे हर दिन नया और स्पेशल होता है व्यक्ति के लिए,
0: बिल्कुल।
1: कुछ करने के लिए मैम।
0: जी, चलिए, बहुत
1: और
0: अच्छा
1: माँ,
0: जी।
1: आज मैं सुनूंगा मूवी का नाम रहेगा मैम, आई हेट लव स्टोरी।

0: गाने के
1: ओके
0: बोल हैं सदका किया,
1: जी
0: और ये गाना मैं कोई डेडिकेशन कर सकता हूँ आपकी
1: जी
0: इजाज़त हो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी
0: सबसे पहले मैम आपको, इसके अलावा रिचिता मैम को, निहारिका मैम, सुमन मैम, प्रियंका मैम,
1: जी
0: इसके अलावा देवकी मैम, सोनिया मैम, सीमा मैम, सबीना मैम, दीपक सर, और इसके अलावा जाकिर सर आपके यहाँ से, और
1: हाँ
0: विरस मनी, कुमकुम,
1: जी
0: समा परवीन, सादकी, रिंकी, पिंकी, और जितने भी श्रोता सभी, और
1: जी
0: भारती राव, संतोष राव भी इसके साथ।
1: जी जी जी जी राहुल जी, तो आप हमसे जुड़े इतने समय बाद हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद
0: थैंक
1: करते
0: यू
1: हैं
0: मैम।
1: आगे भी आपसे बातें होंगी, और अभी फिलहाल के
0: ओके
1: लिए
0: मैम,
1: जी हम सुनवाते हैं
0: धन्यवाद।
1: आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: नमस्ते मैम जी।
0: जी, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं सेवन सिस्टर पिपरा से डीजे प्रोग्राम का नियमित श्रोता आशुतोष जगदाप बोल रहा हूँ।
0: जी आशुतोष जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ,
0: जी
1: बढ़िया हूँ। और
0: जी
1: अभी पानी भी गिर रहा है मैम जी।
0: अच्छा, बारिश हो रही है वहाँ पे?
1: दिन में काफी गर्मी था, अभी तो
0: अच्छा।
1: काफी राहत मिला है क्योंकि पानी गिर रहा है। अब
0: अच्छा, चलिए अच्छा, तो आपको बारिश का मौसम पसंद है? जी
1: बारिश पसंद है मैम जी, ज्यादा बारिश हमें तो ज्यादा बारिश पसंद नहीं, थोड़ा ज्यादा पसंद।
0: अच्छा, तो थोड़ा सा सुहावना मौसम रहे तो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए,
1: जी
0: देर ना
1: जी
0: करते हुए आपसे जानते हैं कि ऐसे मौसम में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मैम जी, आज मुझे सुना दीजिए मशहूर गुलजार जी का लिखा हुआ किशोर दा की आवाज है। मैं फिल्म
0: जी
1: का नाम है घर और गाने का नाम है फिर वही रात है। गाने को सजाया रहा जी।
0: जी तो ठीक है,
1: और मैम जी आपके इजाजत हो तो मैं दूसरा प्रश्न पे
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल।
1: सुनेंगे से सप्तमी विष्णु कुंडू जी, पूर्णिमा
0: जी
1: दीदी
0: जी
1: आप भी सुनेंगे और मध्य प्रदेश की सुनेंगे प्रेम सिंह भैया,
0: जी
1: रामेश प्रजापति, भगवान सिंह पारना, राम बाबू सुखमा, सुशील सिंह राजपूत
0: जी
1: और चाहेंगे
0: जी
1: नेटवर्क का साथ।
0: जी जी तो ठीक है, आइए आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: जी, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: सिंह सिसोदिया
0: जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: जी नमस्ते। मैं ग्राम बछोड़ा जिला उज्जैन से।
0: जी, आप उज्जैन से हैं, तो अब आपसे जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनेंगे। क्या है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो देर ना करते हुए हम चाहेंगे कि आप अपना मनचाहा गीत सुनें।
1: मनचाहा गीत हिमालय की गोद,
0: जी
1: चांद सी महबूबा, ऐसा मैंने कब
0: जी
1: सोचा।
0: जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना, तो आइए आपको सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद गीत।

दोस्तों, इसी के साथ आज का युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नांदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे है। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत अंदाज तेरा मस्ताना फिल्म से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत रचना समीर की है और संगीत आनंद मिलिंद का।

अगली पेशकश सिमरन फिल्म से, स्वर अरिजीत सिंह का, गीत रचना प्रिया सरारिया की है और संगीत सचिन का।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
3: इंडिया ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality,

0: and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कुमार सानू और अनुपमा देशपांडे की आवाज में लुटेरी फिल्म का ये गीत।
2: जिस दिल ने तुझको चाहा था, जिस दिल ने तुझको पूजा था,

समय आप सुन रहे हैं सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में तैयार प्रिया सराइया का लिखा गीत, स्वर दिया सचिन सांगवी ने, और फिल्म है भूमि।

श्रोताओं, अभी आप सोनू निगम की आवाज में गरम मसाला फिल्म का गीत सुन रहे थे। अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, रॉक ऑन 2 फिल्म से। आवाजें शंकर महादेवन और दिग्विजय सिंह की, गीत रचना जावेद अख्तर की है और संगीत शंकर एहसान लॉयर का।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनते हैं रोजगार समाचार।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग से समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियुक्ति सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूर संचार में स्नातक डिग्री का समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल में अवर सूचित प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदोरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी सिविलियंस पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम में तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमित अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार से प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले SC, ST और OBC उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन सातवें वेतन आयोग

में पे मैट्रिक लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों व स्व सत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 7841-04 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना से विज्ञापन को देखें। ये थी रोजगार समाचार।

श्रोताओं, अभी आप रोजगार समाचार सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। अब सुनते हैं गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन

0: करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
3: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
4: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा

0: कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
1: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।

0: ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
1: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ

0: संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said on the 18th of last month, they successfully launched India's first privately developed rocket. Meanwhile, the National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: On National Space Day, Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said the historic soft landing of Chandrayaan 3 placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security.

सरोवर मतलब अगेन तालाब. अदर एग्जाम्पल्स वी हैव, देर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन सहडोल इन मध्य प्रदेश, दैट इज इन रियलिटी सहस्त्रडोल, यानी हजार तालाब वाला एक शहर. इन NCR वी हैव लाल कुआं, धौला कुआं. इन उत्तर प्रदेश वी हैव पुखराया. पुखराया मीन्स पोखर वाली जगह. नॉट ओनली दीज बट वी हैव मैनी थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया विच आर वेरी फेमस. ऑल आर नेम्ड आफ्टर द पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज. ऑलमोस्ट एवरी हिस्टोरिक टेम्पल इज बिल्ट बिसाइड ए पॉन्ड और स्टेप वेल. पुष्कर लेक इन राजस्थान, टेम्पल टैंक्स ऑफ मदुराई, एंशियंट यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, तक्षशिला ऑल्सो हैड ब्यूटिफुल मेंटेन्ड पॉन्ड्स विद इन देयर कैंपस. दीज वाटर बॉडीज वर नॉट ओनली सोर्स ऑफ वाटर बट ऑल्सो सिंबल ऑफ प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड कम्युनिटी हारमोनी. आर एंसेस्टर्स बिल्ट दैम विद लव, पर्पज, समटाइम्स बाई किंग, समटाइम्स बाई वेल्दी मर्चेंट्स, समटाइम्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, एंड समटाइम्स ड्यूरिंग ड्रॉट वेन वॉटर वॉज मीन टू द सर्वाइवल. बट सैडली टूडे ऑन द नेम ऑफ

0: करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस

0: हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद मालसे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा तिलक। बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड अ नेचुरल फ्लेयर फॉर म्यूजिक सिंस अर्ली चाइल्डहुड। विथ अनइक्विवोकल सपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स, शी वॉज इनिशिएटेड इन टू द ओशन ऑफ म्यूजिक बाय मिसेस सुहासिनी एंड मिस्टर प्रभाकर व्यास एंड लेटर बाय डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले। हर म्यूजिकल जर्नी टुक फर्म रूट वेन टू सीनियर वोकालिस्ट ऑफ द जयपुर अतरावली घराना, श्रीमती कमलताई तांबे एंड श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर, ट्रेन्ड एंड मेंटोर्ड हर इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ द जयपुर अतरावली घराना गायकी ओवर अ पीरियड ऑफ टू डिकेड्स। शी हैज ऑल्सो रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम पंडित अरुण द्रविड एंड प्रोफेसर मिलिंद मालशे, बोथ स्कॉलर्स ऑफ जयपुर गायकी। बेस्ड ऑन द सॉलिड तालीम दैट शी रिसीव फ्रॉम बोथ हर गुरुज, हर गायकी इज एम्बेलिश विथ ओपन थ्रोटेड आकार, बोल, उपज, गोइंग हैंड इन हैंड विद द लय एंड ब्यूटिफुल गमक पैटर्न्स ऑफ तान, ऑल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रागा। वन ऑफ द लीडिंग वोकैलिस्ट टू प्रेजेंट एंड प्रोपोगेट द गायकी ऑफ द लेजेंडरी गान तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर ऑफ द जयपुर अतरावली घराना, विदुषी प्रतिमा तिलक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा। ऑल्सो द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत जोशी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha, and that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai, and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे है। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को सूचित किया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है, इसलिए उन्हें 25 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की दूसरी तिथि तदनुसार 24 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।